0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए

0: IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र

0: और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, तालध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
7: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने

0: इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain.

पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक यहां उपस्थित हैं। मंदिर प्रशासन की जो कार्यालय है उसके छत पर हमें इस बूथ में हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने तीन सुसज्जित रथों पर ठाकुरों के हम दर्शन करेंगे और सामने मेरे श्री मंदिर है। श्री मंदिर की शिखर पर नील चक्र है, नील चक्र से बंधा हुआ पतिता पावन ध्वज है और ये समूचा दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन लग रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, श्रोताओं को, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अभी तक जो मंदिर की अंदर की जो नीतियाँ थी भगवान के पूजा की, उन्हें सुबह जगाकर, उन्हें रात के वस्त्र को उतारकर नए वस्त्रों से सजाकर उनकी जो दिनचर्या होती है वो सारी नीतियां समापन होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक रथों पर उन्हें लाया जा रहा है। सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन महाराज उन्हें रथों पर लाया जाता है। जैसे कोई बहुत ही गणमान्य व्यक्ति किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उनके सुरक्षा अधिकारी वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और संतुष्ट होने के बाद वो खबर भेजते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद वो गणमान्य व्यक्ति वहां पधारते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सुरक्षा अधिकारी हैं। सबसे पहले उन्हें सेवक लोग अपने

0: दोनों हाथों से उचक कर आगे पीछे झूला झूलाते हुए लाते हैं और तीन रथों में बीच का जो रथ है देवी सुभद्रा जी का रथ, जिसे देवदलन या दर्पदलन कहा जाता है, काले और लाल वस्त्र से आच्छादित बहुत ही सुंदर कारुकार्य है, बहुत ही सुदृश्य है, उस रथ पर उन्हें विराजमान किया जाता है सुदर्शन महाराज को। उसके बाद आते हैं बड़े भाई दाऊ जी, बलभद्र जी। बलभद्र जी, उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को पकड़कर पीछे रेशम की डोरी से बांधकर सेवक लोग उन्हें झुलाते झुला झुलाते रथ पर विराजमान करवाते हैं। ये दोनों अभी उपस्थित हो चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है श्री मंदिर के भीतर से ठाकुरों को बाहर बड़दांड पर लाना और रथों पर विराजमान कराना, इस प्रक्रिया को यहाँ की जो श्री मंदिर की जो भाषा है उसे पहंडी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहंडी शब्द जो है वो संस्कृत के पदहुंडन शब्द से आया है। पदहुंडन मतलब एक एक कदम। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री बलभद्र जी को, माता सुभद्रा को उस पहंडी प्रक्रिया में लाना जाता है। देवी सुभद्रा, उनके हाथ पांव नहीं है तो उन्हें सेवक लोग अपने कंधों पर उचक कर लाते हैं, जिसे शून्य पहंडी कहा जाता है। वो सेवकों के कंधे पर सोते हुए आसमान की तरफ अपना मुंह करके उन्हें लाया जाता है और बीच वाले रथ में उन्हें विराजमान करवाया जाता है। पहले सुदर्शन महाराज, फिर बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। बलभद्र जी का रथ जो है वो लाल और हरे रंग के वस्त्र से आच्छादित है, उसका नाम है तालध्वज। और अब सभी बहुत ही आतुर होकर देख रहे हैं कब अपने इष्ट देव जगत के नाथ, कल्याणकारी भगवान श्री जगन्नाथ पधारेंगे। जैसी कि हमें सूचना मिली है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की पहंडी शुरू हो चुकी है। घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ सभी भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, धुआंधार बारिश को नज़रअंदाज करके सभी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बड़दांड में। ये बहुत ही रोचक दृश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे, रत्न सिंहासन को त्याग कर रथ पर बने काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होंगे, दोनों हाथ फैलाए अपने जो भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को वो आलिंगन करने के लिए आतुर होंगे और भक्त एक नज़र उन्हें देखने के लिए तरसता होगा। ये बहुत ही अद्भुत जो समारोह है रथ यात्रा का। ऐसी स्थिति में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही पुरानी कहावत है, दोले तू दोलो गोविंद रथेचु, दोले चू दोलो गोविंद चापे तू सुदना रथे तू वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दोल पूर्णिमा में, दोल पूर्णिमा जो होली का समय है, तब भगवान को दोल वेदी पर, दोल मंडप पर, स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप पर, और जो नौका विहार करते हैं वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को, रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पर मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पा लेता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा, अंग्रेजी में वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जय जगन्नाथ।
1: थैंक यू मजीथिया जी। माय ब्रदर कमेंटेटर, आई एम रजनीकांत नायक, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हुज जगन्नाथ और जगतर नाथ जगन्नाथ, मीनिंग ही इज द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स एंड द Emperor of the whole world. I am wishing you, brothers and sisters of mine, a benign good morning. Even the fact is, the climatic conditions here in Puri this morning has been rather sodden, because it has been raining almost intermittently

0: truth that can never falter. Be it external aggression, as you know, Puri Sri Mandir has been under siege of countless aggressors from outside, for which Rath Yatra has not been held in its centuries-old tradition for nearly 155 years. Or even the recent pandemics like Corona also, they also have not been deterrent in the passage of the cars, in this annual sacred passage of the cars to the birthplace of the Lords. In fact, so strong is the faith of the Odias. And let me tell you, we Odias are a proud race, proud of our ancestry. And we have a very honorable pride in our Lord or in the cult of Jagannatha, which is inextricably mixed with Odia pride. And this rolls on unabated even today. Because every Odia, as I know, is prepared to swear by the name of the Lord Jagannath. And for each of them, it can be said that Ashada is the month when the clouds rumble in the sky. In fact, they have been rumbling a bit more since yesterday. And it is predicted that there will be rains for the coming 2 days also. And with this, and promising you to speak more, I am handing over the mic to my fellow commentator, Sri Mohan Majithia ji, to continue with the commentary with Hindi.
1: Dhanyavad, Professor Naik. Varsh bhar Mahaprabhu Sri Jagannath ji Sri Mandir ke bhitar रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं और भक्तों को अपने इष्ट देव के दर्शन हेतु मंदिर के भीतर जाना होता है। बस यही एक ऐसा दिन है जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसीलिए रथ यात्रा में शामिल होने की इच्छा लेकर देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी आ पहुँचते हैं। वैसे तो भारत के कई छोटे बड़े शहरों में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित मंदिर हैं और उन शहरों में रथ यात्रा का आयोजन भी होता है, परंतु चार धामों में श्रेष्ठ ये श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि पूरी शहर, यहाँ की जो रथ यात्रा है ये देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपनी ओर। कोई भी भक्त एक ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता जहां उसे अपने इष्ट देव के, अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन उसके सामने बड़दांड पर मिल जाएं। बड़दांड यानी कि श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का करीब 3 मील का सीधा रास्ता, जिस रास्ते तीनों रथ यहां से खींचे जाएंगे। एक के बाद एक, सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाएगा, फिर देवी सुभद्रा जी का, और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े आराम से बड़े भाई को और बहन को आगे भेजकर फिर बाद में अंत में वो आएंगे। वो अपने मन के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब रथ खींचे जाएंगे तब करीब करीब 3 बजे, 3:30 बजे का समय जो है उस समय खींचे जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि बड़े भाई दाऊ जी महाराज वो अपने ताल ध्वज रथ पर विराजमान हो चुके हैं, माता सुभद्रा देवदलन रथ पर विराजमान हो चुकी हैं और उनके रथ में सुरक्षा अधिकारी के रूप में चक्रराज सुदर्शन भी मौजूद हैं। इंतजार है तो बस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का। किसी को चकानयन के दर्शन की इच्छा होती है तो किसी को रथ खींचने की लालसा, और अगर रथ खींच न सके तो रथ की पवित्र रस्सी को छू भर लेने से जो आत्मसंतोष मिलता है उसी से ही भक्त प्रसन्न हो जाता है। भक्त और भगवान के मिलन का ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है। महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। बड़े बड़े चक्राकार नयन जिसकी पलक नहीं पड़ती, प्रभु जी के ऐसे रूप को देखकर भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का

0: लहर खींच उठने लहर उठने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छंद याद आ रहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कई प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुख के जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना स्वाभाविक बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्कंद पुराण में वर्णित है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को अगर एक बार श्रद्धालु दर्शन कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बीच में देख रहा हूँ बारिश की बूंदें अभी भी जारी हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में, उनके उल्लास में कोई कमी नहीं है। वो आतुर नयन से इस बड़दांड पर आंखें गाड़े बैठे हैं, हमारे महाप्रभु आएंगे और अपने रथ पर विराजमान होंगे, फिर हमें अपने बाहें फैलाए वो हमारा स्वागत करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमें बुलाएंगे कि आओ मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हें आलिंगन करने के लिए व्याकुल हूँ, और चलो मेरी रथ की डोर को पकड़ो, खींचो और मुझे अपने जन्म बेदी तक ले चलो। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अंग्रेजी में। जय जगन्नाथ।
1: ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज आई वाज टेलिंग यू, द माइटी चैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज डिवाइन सिबलिंग्स रोल डाउन द ग्रैंड एवेन्यू ऑफ पुरी विद इट्स थ्रंगिंग असेंबलीज ऑफ मिलियंस ऑफ drunken devotees. I want to emphasize, people have to be drunken in order to brave the rains, and I have seen them literally doing the same thing in the scorching heats of summer also. They don't seem to care because it is their Lord, it is their God, it is their Jagannatha who is going on a journey, and it is they are all bound to follow him in this annual journey to the birthplace of the Lords, which he is promise bound. He has promised Lord Indradumna to do it at least once a year, and that tradition has been continuing for hundreds of years. And you know, they do it in a very spirited way. In fact, so spirited and drunken, the devotees appear even this morning of rain-sodden grand streets of Puri, that even the Spanish carnival, which is known for its color and excitement, for its intoxicated behavior of the crowd, will be hardly any match to the interest and enthusiasm that the crowd at Puri show this divine day, this pious morning. Even though the rain gods are not kind today, they continue with their interest unabated, because they have been guaranteed that Lord is playing a divine game today, which guarantees them moksha or redemption of a most assured kind, because it is their Lord who is believed not only to be the Lord of the Lords, but also a very dear friend, a sturdy solace and a shelter of the most reliable kind, who they can embrace, they kiss, and they can also caress him. In fact, I was watching a few minutes back the Pahundi BJ, or like my fellow commentator said, the step-by-step arrival of the Lords. Lord Jagannatha, his elder brothers, Lord Balabhadra and his sister Devi Subhadra, and also the caretaker Sudarsana, who comes the first of things. Even as I was watching the Pahundi BJ,

0: ये एक रस्सी से बना चक्र घुमा रहे हैं जिसे बनाटी कहा जाता है। यहाँ की ये पारंपरिक कला है जिसको यहाँ ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार जो जिस भी कला में माहिर है वो अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। अभी तक जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से बाहर आने की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि जो हमें लग रहा है, भक्तों में जो उत्साह लग रहा है, जय जगन्नाथ की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे। इतने में मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को सर पर एक सुंदर सा मुकुटनुमा टाहिया पहनाया जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे टाहिया कहते हैं। टाहिया एक बहुत ही सुंदर मुकुट है, बहुत ही पवित्र और पारंपरिक आभूषण होता है, जिसे रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ठाकुरों को पहनाया जाता है। मुख्य रूप से टाहिया सोल से बना होता है। सोल यानी एक प्रकार की प्राकृतिक घास जो बहुत ही हल्की और स्पंज जैसी मुलायम होती है। इसे छीलकर अंदर का सफ़ेद और चमकदार गुदा निकाला जाता है और उस गुदे से सुंदर कलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि सोल से बनी कमल की पंखुड़ियाँ, मोर के पंख के आकार की नक्काशी और सोल से ही बने कदंब के फूल टाहिया को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। ये इतनी नाजुक और बारीक कारीगरी होती है कि इसे बनाने में कई दिन और कई कारीगरों को काफ़ी समय लगता है। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार टाहिया, रथयात्रा, बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्री बीजे के दिन देवताओं को पहनाए जाते हैं। जब भगवान रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की ओर जाते हैं तब इसे बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनके सिर पर पहनाया जाता है, उन्हें सिर पर धारण कराया जाता है। लेकिन रथों तक आते आते उनके जो आतुर भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो टाहिया को खींचकर उससे एक टुकड़ा अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। भगवान भक्तों का ये जोश, ये उल्लास, ये उन्माद देकर स्वयं खुश होते हैं और ये कहते हैं कि चल आज तेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाए, ले जा मेरे टाहिया का एक अंश, उसे संभाल कर रख, तेरा मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान भक्त की इस मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ ही देर में लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे। और अब आगे का हाल सुनाने के लिए प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से मैं अनुरोध करूंगा। रजनीकांत जी, जय श्री जगन्नाथ।
1: As I was telling you, this annual Yatra of the Lords entails mythology, history and folk belief of the rarest of rare cult, that is the cult of Jagannatha. In fact, there are so many books written on different rituals which are performed almost round the year in order to celebrate the different functions which are webbed round the worship of Lord Jagannatha, that it will not be possible to talk about all of them here at one go. But suffice it to say that the most adored and loved deity, that is Lord Jagannatha, happens to be a Lord whose inception itself is a triumph of human endeavor in its eternal search for redemption or fulfillment. And as my fellow commentator has been telling you, the Pahundi BJ, the process is on. The Lords come one by one. In fact, there are two types of Pahundis, Chhera Pahundi or Gothi Pahundi. Gothi Pahundi is said to be there when the Lord comes one after the other, while when they come back from their birthplace on the Bahuda journey, it is called Gothi Pahundi. So there are two types of Pahundis. Now the first phase of this Pahundi BJ is on, and this Pahundi is not complete because the Lord of the Lords, Jagannatha,

आने का। वो अभी भी मंदिर के भीतर से हैं और बाहर अभी तक वो आए नहीं हैं। इस बीच मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा, मेरे सामने जो भव्य श्री मंदिर है उसके शिखर पर नील चक्र है। नील चक्र अष्ट धातु से निर्मित है और ये नील चक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक रूप मात्र है। उस नील चक्र की ऊंचाई लगभग 11 फीट 8 इंच की है और गोलाई 7 फीट 6 इंच की, जबकि वजन लगभग 1500 किलो तक

का प्रतीकात्मक रूप मात्र है। उस नीलचक्र की ऊंचाई लगभग 11 फीट 8 इंच की है और गोलाई 7 फीट 6 इंच की, जबकि वजन लगभग 1500 किलो तक। मंदिर की चूड़ा या शिखर पर नीलचक्र के साथ ध्वजा बंधी होती है, या बाना, यहाँ की भाषा में उसे बाना कहते हैं, जिसे पतित पावन बाना कहा जाता है। जो श्रीमंदिर तक आ नहीं पाते, वो दूर से ही श्रीमंदिर के शिखर पर बंधे इस पतित पावन बाना को देखकर धन्य हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया है। तो पतित पावन बाना यानी कि पतितों के उद्धार के लिए ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है। ये गाढ़े लाल या पीले रंग का होता है। इसका आकार त्रिकोणाकार होता है और इसके बीच श्वेत रंग से चंद्र और बिंदु उसमें बनाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर। मंदिर के शिखर पर से नील चक्र पर बंधा हुआ ये पतिता पावन ध्वज बहुत ही आकर्षण होता है। इसका प्रतिदिन संध्या समय पुराने ध्वज को नीचे उतारा जाता है और नया ध्वज बांधा जाता है। इस कार्य के लिए विशेष सेवक होते हैं जिन्हें गरुड़ सेवक कहा जाता है। ये गरुड़ सेवक यानी कि उनके इष्ट देव गरुड़ होते हैं। ये गरुड़ सेवक प्रतिदिन संध्या में नए ध्वज लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज बांधते हैं और जब मंदिर से शिखर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर की ओर पीठ करके नीचे उतरते हैं। ये परंपरा रही है, विशेष परंपरा नील चक्र पर बाना बांधने की और बांधकर उतरने की, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। 12वीं सदी में बना ये भगवान का मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। देश भर से, विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें परंपरा अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, इसीलिए शायद रथ यात्रा का ये अवसर है। भगवान पहले मानवीय लीला के अंतर्गत बीमार होते हैं और 15 दिनों तक वो दर्शन नहीं देते हैं अपने भक्तों को, फिर स्वस्थ होकर जड़ी बूटी और विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि से उनकी चिकित्सा होती है, फिर भगवान स्वस्थ होकर नव यौवन का भेष लेते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ पर विराजमान होकर श्री गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है श्री मंदिर की जो सामान्य परंपरा। प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसा एक अलौकिक ये अवसर होता है जब वो अपने भगवान को अपने सामने देख पाते हैं। ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भक्त सालबेग का। भक्त सालबेग जिसकी समाधि इसी बड़दांड में श्री मंदिर से गुंडीचा जाते समय बीच में आती है। भक्त सालबेग वैसे यवन थे, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के हर प्रत्येक घर में आज भी उनके रचित उड़िया भजन गाए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। जैसा कि एक भजन है, आहे नीलो सवेलो प्रबल मत्त बारण मुआर त नलिनी बन कु कर दलन। एक कवि ने हिंदी में इसका अलग भावांतर किया, ऊपर नीला अंबर है नीचे सागर नीला, नील शैल के नील माधव अनोखी तेरी लीला, अनोखी तेरी लीला। इस समय अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु आतुर होकर श्री मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार की ओर देख रहे हैं, कब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उनके चक्राकार नयन देखकर मैं अपने आप को धन्य हो जाऊंगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, वरना फिर अगले वर्ष मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अगर मैं रथ की रस्सी को छू नहीं पाया, अगर रथ को खींच नहीं पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये श्रद्धालु अभी भी आतुर होकर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।

0: हरी बोल की गूंज कर रहे हैं और हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में एक अद्भुत तरंग उन्माद है। सभी बड़े आतुर होकर सिंह द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान अभी तक नहीं आए। वो अभी बड़े अभी भी वो बुला रहे हैं कि भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आओ हमें दर्शन दो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। और अभी तक हम इंतज़ार में हैं, आप सभी भी इंतज़ार में रहिए। अभी तक की जो यहाँ हमारे समक्ष जो घटा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब दूसरे चरण में दोपहर 3:10 में मैं फिर से आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक और मैं मोहन मजीठिया आपसे विदाय लेते हैं और आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को ले जाते हैं। चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। श्री जगन्नाथ जी की इसी रथ यात्रा के दूसरे भाग का आंखों देखा हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 3:10 से।
2: यू आर लिसनिंग टू द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बींग सेलिब्रेटेड एट पावन क्षेत्र पुरी ओडिशा। Our commentators were Shri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English. The second phase of the live commentary of Shri Jagannath Rath Yatra will be broadcast from 3:10 PM onwards. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.

0: रहमान भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

अर्जुन की तर्ज थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नज़ारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर

आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं?

राज कपूर और रूतन पर फिल्म आएगा ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से, और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ्य है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियाँ कैसी शांत पड़ी हुई हैं, और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है, और एग्ज़ाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी। इन दिनों

उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते, आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें, ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे, ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफ़र में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नज़र आ रही हैं, ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया और सीडी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और

फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं, इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज़ में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमियां उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियाँ हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर कर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मज़ा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्ज़रलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसेन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
4: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
4: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें,

0: रोड्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में

0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HEF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए

0: मॉडल संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. ఇప్పుడు లలిత గీతాలు వింటారు.

0: भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इसलिए रथों पर छेरा पहरा की नीति संपन्न करने की जो परंपरा है, इसका जो हक है ये उन्हें प्राप्त है। छेरा पहरा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। छेरा और पहरा ये दो शब्दों का मिश्रण है। छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना। तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा। तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है। प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नौर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं। ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है। इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं। यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है, आगे चलकर भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। जिस प्रकार पंच तत्वों से बने मानव शरीर या मानव रथ निर्माण होता है उसी प्रकार पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार रथ के निर्माण में भी पांच तत्वों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, धातु, वस्त्र, जरी और रंग आदि जंबूरा ये सब प्रयोग में लाया जाता है जिससे रथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इन पांच तत्वों में से दारू यानी लकड़ी ही रथ निर्माण का प्रमुख कारक है। रथों के निर्माण में साधारणतया शाल, असन, धौरा, अर्जुन और फांसी आदि लकड़ियों का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। महाराणा गुणाकार छद्माकार वंशानुक्रम से ये रथों का निर्माण कार्य करते आए हैं। जो शास्त्रीय विधि से रथ का निर्माण करते हैं रथ खला में मुख्यतः लकड़ी का काम होता है और जबकि अन्य कार्य अलग अलग जगहों पर होते हैं। ये पारंपरिक शैली से शास्त्रानुमोदित विधि से रथों के निर्माण कार्य संपन्न किया जाता है। रथों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक।
1: I was telling you, friends, the Jagannath as we see him has a lot of speciality about him, but more about it a little later. We have a guest in our studio. She is a lady we are having in the studio, and we will have a little interview with her and we'll talk to her about her experience here. Madam, your name?
2: My name is Sumandar. I'm basically from Jammu and Kashmir, but settled in Gujarat, Ahmedabad.
1: Gujarat, Ahmedabad. Is this your first time that you are coming to Puri?
2: No, this is my third time I'm coming to Puri, but this is my first time for Jagannath Yatra, Rath Yatra.
1: Oh, I think. What's your take on this Rath Yatra, which is so famous that we call it the cynosure of all festivals here?
2: It is something which is miraculous. And it's happening only with the grace of God. It cannot happen without the grace of God and His desire. So many people coming in here, so many people coming for the darshan. It is something which cannot be expressed in words. It's only that once you are here, you can feel that it is in the air, the purity, the God, the divinity, it is in the air.
1: Madam, did you have these religious feelings early in life or somebody inspired you to?
2: My father, he was a very big fan, or you can say devotee of Jagannath Puri. But unfortunately, before he could not come and visit Puri. We are basically from Jammu and Kashmir. It was a long distance from Kashmir to this point. But he used to tell me stories about Jagannath Puri. So since I was a

0: who are not lowly because they are criminals or sinners, but because they are interested in getting salvation. It can also be said with impunity that Indian democracy perhaps should be said to owe this to Lord Jagannatha. And the Gajapati, that is the king of Puri, he does a special role. The role is that of Chera Pohara. And that he acts as a sweeper, cleaning the chariots of the Lord. This is a ritual in vogue since the historical Kanchi expedition, where Lord Jagannatha and Lord Balabhadra had redeemed the honor of the king. And because the king happens to be the chief servitor of the Lord, and the gods fought on his behalf and wrested the princess of Kanchi from her unwilling father king so that she could become the legal spouse to Gajapati of Puri. And besides, the two large eyes of the Lord are said to be representing sun and the moon, and he commands over all lesser gods. And the chief speciality of this Lord, our Lord Jagannatha, can be said to be lying in upholding family virtues and proving beyond doubt that gods are within touchable distance of human beings. The Lord's Leela or divine game is at its best during the Kar festival. This is the occasion where the Supreme Lord or Purushottama Jagannatha comes to meet his bhaktas in the open. The enthusiasm of millions of bhaktas of his to have a glimpse of their favorite deity can be said to be the best spiritual show on earth. And faith is supposed to be the greatest healer, and at no other juncture in human history the time was more appropriate for man to repose his faith in the Almighty Lord, as we have heard in recent times when we had the corona pandemics, or for the last so many years, about 155 years in the history of the temple, Jagannath worship has not been able to be done because of foreign aggression. With this, I will like to hand over the mic to Majithia ji for commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य महाराज तीनों रथों पर भगवान के दर्शन करने के साथ साथ जनता के लिए, समूचे विश्व के लिए प्रार्थना की है भगवान से कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो. उसके पश्चात वहाँ से आज्ञा माल लेकर गजपति महाराजा के निवास पहुँचे, और गजपति महाराज कुछ ही देर पहले हमारे सामने से एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुँचे हैं. वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे. जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं. इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे. ये उनका पारिवारिक हक है. भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है. यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं. अभी अभी वो आए हैं. पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे,

0: many of them, but preponderance of devotional literature in pre-colonial Odisha, as researcher Manmohan Chakraborty highlights, and later on other historians have also agreed with him on this. And the first famous epithet which was given to a singer of Janana in Odisha was Banikantha. It was conferred on Nimai Charan Harichandan. More about this later. I would like Majithia ji to continue the commentary in Hindi and talk to you about the progress of the Rath Jatra.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं देख पा रहा हूं बलभद्र जी के तालध्वज रथ पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करने में लगे हैं. तालध्वज रथ के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद, वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर. उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने की मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे. इसमें अभी समय है. मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पुरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, या जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे. जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चुड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे. अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा. अब आप सोच रहे होंगे, ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी. आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा. उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है. 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे. रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे. इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है. जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पूरी आए हुए थे. उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पूरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया. आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं. जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए.

उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में

0: उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएं बहुत हैं, हम कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है, उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है, उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है, अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो वहाँ रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे। हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पूरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन,
2: नमस्कार आकाशवाणी।

कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन। कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ, लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

0: दंडरूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं, वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पौंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है, भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथ पुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ

0: अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ఆకాశవాణి సమయం 8:30 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో తెలుగులో జాతీయ వార్తలు వింటారు విశాఖ కేంద్రం నుంచి.

0: जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना

0: करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्य

0: सभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस्म पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 200

14 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए।

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్త.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है. श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है. इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं. 2015 में ये मात्र 19% था. उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है. सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है. नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे. पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई. ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है. नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया. ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है. भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर 200 करोड़ रूपये से अधिक खर्च होंगे. रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा. न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके. ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई. सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे.
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया. रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी. हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी.
1: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई।